0: विद्रु अदृष्ट जय कर्मचार उस्तत संपूर्ण
1: स्वाक महला पहला आपे पांडे साजी ना पे पूर्ण दे एक ने तो समय एक चले रहन चढ़े एक ने हाली पैसा ने एक ऊपर रहन खड़े तेना स्वारे नानक जिनको नजर करे महला दूजा
0: आपे साज करे आव जाए विरखे

अकाल हरिय बाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भरम हरि।

जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्तु अंग रटस्तु अंग।

शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विसंगत वेद और पुराण गति सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कित सुनी कुमार कित अंसावतार कित काल बस भय है। पीर पिकम्बर कित गाने न परते भूमि हित हो के फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई घोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूमांत भूम मिलत है। सिज दे करे अनेक तो बची कपट भेष भूष दी अनेकता निभावत है। शीश को कहा भय मल्ल जब काटत अनेक दंड सोतना डंडो दया से टांग अथ तीस को कहा भय रोगी जो पे डारे रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कत जाके कान में खजूर दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरिया फल फूल को बचैया सदा बन को भ्रमिया और दूसरो न भूक सौ कह भयो भेड़ जो सत्य शीस वृक्षन सो माटी को बचैया बोल पूछ लीजे जो कसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ ना चुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करुई करत है। एक पाए ठंडे सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक भाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जोग एक ठोर बास करे काग और चील देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी या बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पै लगा व्यापारी कहूँ दंडधारी हो के लोग ने भ्रमावई कामना अधीन पर नाचत है ना जन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार की दर पुकार पर शीत काल गुंचर उगादहा अनेक ताप कार ही का भयो जो पे कल वत्र लियो गांस बीज चीर चीर चूर टाक उठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ दंग धार डार डार फांस ढंग।

अपना तथा अपना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए जो बायत अजाप देव भूतना सदीव तो ही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी ढोल वो करत है। आग में जरत गतराण की परत कर पताल के पास क्यों भुजंग न तरत।

आग उठे न्यारे न्यारे हुई के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कणों का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सब पच उठ जाएंगे। केते नब बीज अच पछ को करेंगे भज, केतक व्रत अच हो बच्चा।

देह दुखंग हूँ औषधि रोग के शोक सुखंग हूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सादगी तामसी हो कहूँ जोग विद्या तरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जस विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बान।

कहूँ चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं

क्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतंग कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगलाचार।

सदी हरता सनाद आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात, जय पुत्र व्रात नहीं मित्र मात, जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान, जय नेह गेह नहीं ब्योत बान, जय जात पात नहीं सत्र मित्र, जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र, जय रंग रूप नहीं राग रेख, जय जन्म जात नहीं भरम भेख, जय करम वरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात, जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद, जय रोग शोक नहीं सत्र साध, जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आद अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल व्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतेव, जय अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अच्छा।

तुलंत कई सिमृत शास्त्र चरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई अगन होत्र कई पान आहार कई कर्त कोड मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच नहीं तब देव होवत प्रताच कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूं वेद रीत जग याद क्रम कहूं अगन होत्र कहूं तीर्थ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बडंत कई कर्त बांध बांधन विचार नहीं नैक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ परम सुवरम कई अग्नहोत्र कई देव कर्म कई कर्त वीर विद्या विचार।

कहूं करत ब्रह्म विद्या विचार कहूं जो गरीत कहूं बिरद चार कहूं करत जश गंधर बगान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितर कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं करत सास सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताव कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजांत नहीं तदपतास पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप देश देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित लीन भो

जय जम पहजो गण जोह जो अंग भय कंभ मेर पयाल भो अंग तपतापद सर्व जलेर थलंधन उचरत इंद्र कुमेर बलं अनखेद स्वरूप वेद भयंगन खंड अभूत छेद छे अंगन काल पाल दयाल सुंग जे ठट्यंग मेर आकाश भुवंग

जय राग न रूप न रेख रुखं जय ताप न साप न शोक सुखं जय रोग न शोक न भोग भुयं जय खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात वितं जय रचयं छत्रि छत्र चितं जय राग न रेख न रोग बणं जय द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रच्यो दस चार करी नव खंड सच्यो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु रूपिंद नगिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड से तज उद भुजंग किए देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न ब्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जम पह किन्नर जछ जुवंग नर नार न पुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथादिक पात गणंग भवभूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जात की।

गण किन्नर जच भुजंगर छे मणमाणक मोती लाल सुचे अनभंज प्रभान गंज वृतंग जय पार न पावत पूर्मतंग अनखंड स्वरूप अटंड प्रभा जयम पद वेद पुराण।

जय भोकर धर्म सभय तुझ है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति वेद।

तात मात जात है न पाद चिहन भरण है अदेह शेख भेक है सदीव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्व भरण है जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है अद्वेख है अभेग है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख अन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण यो कुरान।

रंग है न रंग है न संग है न साध है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न चार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न नेह है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न

रूप है न रूप रेखरा रह न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है। गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा से तस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा। अगस्त आद जे बड़े तपस्त विषय किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिए। अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए। सदैव सर्वलोक के

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अकाद ब्रह्म सो धर्म करम प्रवीण। जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद मूर्ख अपार हस्त गेट पिगैव सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखेर में।

दिव्य बना जा नहीं जे मरम वेद कतेव सनक औसन के सनंदन पाव ही न सेव जच किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार नेत नेत पुकार रहे सेव सक्रौ मुखचार सर्व सबत अवतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेज अनाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो बिराज राज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय न माहे वस नंगे बिखे बिराज सूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप रात दिवस न मध उर्द न भूमा खास अनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गुर के नधीन सर्व सबत पतार के तर जानिए जह ज्योत शेष नाम सहंस वर्ण है नेत पूर्ण होत सोत सोत हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महागब गढ़त गाड़ अनंत हर हर कहियो सबो

हर हर हर थके सब नहीं पाई ये तह पार ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछरा पार सोत सोत थके महासुर पायु नह पार।

सेजन जुग में सुखवासी से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निर्भव त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन

0: संगत माई पाई आखो वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अपार बख्शिश रहमत सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी। नानक गुरु गोविंद सिंह पूर्ण गुर अवतार जगमग जोत विराज रही श्री अबचल नगर अपार। वड्डे भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। ये भाई कीर्तन बड़ियां रहमतां दे नाल बख्शीशां दे नाल प्राप्त होया हुआ है। ये सतगुरु गुरु नानक देव महाराज की ग्यारहवीं वंश धन श्री हजूर बाबा साहिब सिंह महाराज बेदी साहिब गुरु नानक दी कुल विचों ने। ये उन्होंने दर घर का जथा है जो हुण विराजमान महापुरश हैं श्री हजूर बाबा जी बाबा सरबजोत सिंह जी बेदी साहब। उन्होंने अपार बख्शिश रहमत धन धन बाबा जोगिंदर सिंह जी महाराज मोहनी साहब बाबा जी उन्होंने अपार बख्शिश रहमत है कृपा है अकाल पुरख वाहिगुरु की। धन दशमेश पिता जी कितनिया पंजाब तो संगत आईया आले दुआले तो संगत आउंदियां ने पूरी स्टेट तो संगत आउंदियां किड्डे वड्डे भाग ने। सब तो वड्डे भाग असीं अपने समझदे आ इक कीट नूं गुरु नानक देव महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने चरणों विच बैठ के कीर्तन दीआं दातां बख्शिश कीतीआं। गुरबाणी दे कथन अनुसार गुरु नानक बाबा जी कहते हैं ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरा। बई इत्थे वी ते लोक विच वी परलोक विच वी कीर्तन सहाई होवेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। घर घर होवे धर्मसाल होवे कीर्तन सदा बसुआ। बड़ी कृपा गुरु नानक बाबा जी तां इही वचन करदे ने गुरसिखो संगतो भई हर एक हिरदे दे विच कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना। भी इस रसना दे नाल उस वाहिगुरु की सिफत सलाह कीर्तन भगती जो सब तो उत्तम भगती की रतन। महाराज दसदे होंदे भी इह कीड़ा रतन है जो कीर्तन है गुरु नानक बाबा जी दे। गुरु नानक बाबा जी ने बगदाद शहर दे विच रबाबां वजियां उत्थे नगरी सुन मन हो गई। आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: जिथे भी गुरु नानक बाबा जी गए धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज गए। कहवें मालवे की धरती नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाग लाए किड्डियां वड्डियां बख्शीशां हन। धन बाबा कुलवंत सिंह महाराज उन्होंने बख्शीशां कीतियां नदरां कीतियां मीरां कीतियां। धन धन बाबा राम सिंह जी महाराज सारे महापुरशां दा बिरद है। ये महापुरशां दा प्यार हुंदा क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जो हर का प्यारा सो सभना का प्यारा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जे आपां प्यारे बन गए ता महाराज दे प्यारे आपां बन गए फिर आपां सारा जग जे तू मेरा होए रहा। फरीदा मैं मिलिया सुख होए। महाराज फरीद साहब कहिंदे ने जे तू मेरा होए रहा सब जग तेरा होए। जिवें हुण आपां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणां विच आए हां अरदास करदे हां सच्चे पातशाह असीं तेरे घर आए हां आप जी दे चरणां विच सेवक की अरदास प्यारे जप जीवां प्रभ
1: चरण तुम्हारे
0: जे तू मेरा होए रहे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे ने ना रहणी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका जीरा। किड्डियां वड्डियां वड्याईयां गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने सिखां सेवकां नूं दिंदे हन। आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: की कहिंदे ने बाजां वाले प्रीतम प्यारे जे तू मेरा होए रहे सब जग
1: तेरा होए।
0: महाराज धारना सेवड़ा साहिब वाले इउं पढ़दे हुंदे